listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: ओसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: ओसम

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: तोहरी लचके जब कमरिया हसार

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: सैयारा मूवी से खूबसूरत गाना तुम हो तो सब अच्छा है. वीकेंड को बोल रही हूँ मैं ये. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिनेश आ गए जी आपके सैड बिंदास मॉर्निंग्स लेकर. अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. थर्सडे का दिन सितंबर 3. खुश तो बहुत हो गए तुम क्योंकि मैं भी बहुत खुश हूँ. आई वॉज वेटिंग फॉर द वीकेंड. आई थिंक वी ऑल वर वेटिंग फॉर द वीकेंड राइट.
1: तो किसी रेल सी गुजरती है.
0: बिल्कुल एप्ट बैठता है ये वीक पे. नहीं वीकेंड पे एक्चुअली. वो तो बहुत तेज से भाग जाता है पर हफ्ता पूरा निकलने में बड़ा वक्त लगता है. माय गॉड. देयर वाज अ टाइम इन 90s जब बॉम्बे वाइकिंग्स वर द थिंग. दे वर द वाइब एंड दे स्टिल आर दो. यू नो इट डजंट साउंड ओल्ड. वी कैन स्टिल वाइब टू इट एज इट इज एब्सोल्युटली फ्रेश. रहमान साहब के बारे में तो क्या ही कहूँ भाई. जादू है उनके हाथों में उनके दिमाग में. क्या ही क्रिएट कर जाते हैं यार.

दैट इज टुमारो, क्योंकि कल है बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब. तो रियादा मेडिकल सेंटर में मिलने वाले हैं हम उन सभी से जिन्होंने रजिस्टर किया है और बहुत सारा फन करने वाले हैं. फिलहाल आप मुझे बताइए क्या हाल चाल है, कल का दिन कैसा रहा आपका? सब बढ़िया था ना? अभी क्या प्लान्स है वीकेंड के? वीकेंड के प्लान्स अगर कुछ नहीं बनाए तो मैं बनवा दूंगी, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है. आप बस आके प्यारी से गुड मॉर्निंग कर दो यार, मेरा भी दिन बना दो यार. सुंदर रेडियो 106.3 FM जी बिंदास मेरी जान.

0: from vacation in your hometown. तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials. सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
1: This is Amira Dastur on Radio Olive 106.3 FM, Geo Vindas.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Nisha.
1: You're listening to Radio 11.6.3 FM. Nisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. मसान मूवी से बेहद खूबसूरत गाना तो किसी रेल से गुजरती है. क्या सुंदर लिखा है स्वानंद किरकिरे साहब ने, तो जादू ही कर दिया है. और मैसेजेस पढ़ लेते हैं. नाजनी जी का मैसेज आया है, कहती है, इफ यू आर चेंजिंग द वर्ल्ड यू आर वर्किंग ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स. यू आर एक्साइटेड टू गेट अप इन द मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओए होए होए, वीकेंड की मोटिवेशन देखी आपने, क्रेजी एकदम. संतोष जी का मैसेज आया है, गुड वाली मॉर्निंग जी, विशिंग यू ऑल अ ब्यूटीफुल डे फिल्ड विद ब्लेसिंग्स, पीस एंड जॉय. मे ऑल योर होप्स एंड ड्रीम्स कम ट्रू एंड मे यू फाइंड हैप्पीनेस. हैव अ ब्लेस्ड डे. हरपाल संधू फ्रॉम जिक्रत दुकान. थैंक यू सो मच संधू जी, विशिंग द सेम फॉर यू. एंड शशिकांत पाटिल जी का मैसेज है, हैप्पीनेस इज द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड नोइंग द फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट. इंडीड. और आगे बढ़ते रहोगे और पीछे जो भी हुआ है उसे कंपेयर नहीं करोगे तो एनी विच वेज थिंग्स विल बी बेटर. ट्रस्ट मी ऑन दैट. अबराज जी का भी गुड मॉर्निंग आया है हमें यहाँ पे. और उन्होंने इसे बड़ी सुंदर सी फोटो भेजी है यार. आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस. देर इज़ पहाड़, देर इज़ वाटरफॉल, देर इज़ अ रिवर और साइड में बड़ा सुंदर सा लैंडस्केप है यार. ब्यूटिफुल यार. बाय द वे, आरजे सिमरन इस वक्त छुट्टियों पे गई हुई है, इंडिया घूम रही है वो. सो कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले वो दार्जिलिंग में थी. राइट नाउ शी इज़ इन गैंगटॉक एंड शी कीप शेयरिंग द पिक्चर्स एंड आई एम सो सो सो हैप्पी फॉर हर एंड अ लिटिल बिट जेलस फॉर, you know, because I am here and she is enjoying that beautiful weather. वो इतनी सुंदर सुंदर जगह है. वो वहाँ से ऐसे पहाड़ों की फोटो भेजती है ना. I'm like, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी यार, प्लीज डोंट सेंड दिस टू मी नाउ. जुल्फी जी का मैसेज आया है, टाइम इज प्रेशियस, मेक श्योर यू स्पेंड इट विद द राइट पीपल. इंडीड. हमें ना बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है. वॉट काइंड ऑफ पीपल, विच पीपल वी आर लेटिंग इन टू आर लाइफ. We all have had experiences, right? तो हमें पता है कि कौन सा इंसान हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है. और आई फील कि हमें पहली मीटिंग में ही वाइब तो आ जाती है कि भाई whether it is a good you know entry or not. तो आई तो गेट इट और मैं तो वही डिसाइड कर लेती हूँ. उसके बाद ऑब्वियसली एकदम ऐसे रिजिड नहीं हो जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट भी गलत हो सकती है. लेकिन बी कॉशियस, दैट्स ऑल आई वांट टू से.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

Tanisha. Rehman Sahab aur Chinmayee ki awaaz mein Guru Movie se beautiful track only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain yahan par. And dekho naya mahina shuru hi hua hai. 3 tareek hui hai, 3 din hi gaye hain abhi, baki aur bacha hai kafi kuch. And everybody is trying ki you know jo aakhri 4 mahine hain saal ke apni life isme aise together kar le, koshish to kare at least, let's take the first step. Aisa sabka thought process chal raha hai is waqt. Like जितने भी लोगों से मैं मिल रही हूँ, जो मेरे रील्स फीड पे रील्स आ रही हैं, उसमें भी मुझे यही नजर आ रहा है. सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू यू अबाउट दैट. द मोर ओपन टैब्स यू हैव ऑन योर लैपटॉप, द फास्टर द बैटरी डाइज. एंड इट इज नॉट अबाउट लैपटॉप. जितने ज्यादा टैब्स, जितनी ज्यादा वरीज आप अपने दिमाग में लेकर बैठे रहेंगे ना, उतने ज्यादा आप ड्रेन फील करेंगे, उतने ज्यादा आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे. कुछ बेहतर अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं तो वो जो फालतू का स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें लेट गो करना पड़ेगा. दिस हैज टू बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग योर लाइफ टुगेदर. यस, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स फॉर मी एज वेल. हम दोनों एक ही नैया में हैं मेरी जान. जी हाँ, सेंडिंग नीरज श्रीधर की आवाज में तुम मिले मूवी से टाइटल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Oliver 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और मेरा आज का जो सवाल है, it is not related to studies, or you know, you will not get to know something new from this because you already know this. हम सबने कभी कुछ कभी कम देखी है, right? And not just once, not just twice, काफी बार देखी है. That movie is worth it. तो उसी में से एक सवाल लेकर आई हूँ. यस्टरडे आई वाज वाचिंग अ रील और फिर यू नो मेरे को ऐसे क्लिक हुआ, रही ये पूछते यार दिस इज फन. सो अंजलि, दैट इज काजोल का जो कैरेक्टर है, उसने गमला तोड़ा था उस मूवी में, राइट? वास, कितने वास तोड़े हैं उन्होंने ये जानना चाहूंगी. द नंबर ऑफ वासेस शी ब्रोक इन दैट मूवी, ये जानना है मुझे आपसे. 3311063 पर मैसेज कीजिए, बताइए. और सुन रही है रेडियो ऑल अप 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.

0: दस मॉर्निंग आरजी तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: जावेद, राहुल इज देयर, सोहन का मैसेज है, सैम का मैसेज है, नैना का भी मैसेज आया हुआ है, एंड क्वाइट अ फ्यू मोर देयर बिकॉज K3G फैंस, हेलो. सो याद करेक्ट आंसर इज 2 vases, 2 गमले तोड़े थे उन्होंने, और फिर उसके बाद आखिरी वाला जो दूसरा वाला जो तोड़ा था वो ज्ञान देते देते मुड़ के अपने बालों से तोड़ी. कमाल था वो वाला सीन, इट वॉज सो मच फन यार. वट एवर फ्लोट योर बोट मेरी जान. हाँ जी, एंड आई लव दिस वन जो अभी सुनाने वाली हूँ.
1: कहना है आज तुझसे, कहना है रहना है, रहना है तेरे दिल में रहना है.
0: बिल्कुल, रेंट पे करना पड़ेगा. किसी को नहीं पता चलता, हो जाता है बस. फिलहाल भेज रही हूँ रेखा भारद्वाज और राघव की आवाज में मुसाफिर कैफे से हम तेरे होते तो. ओनली ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
2: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जेसन निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस

Sonu Nigam aur Kavita Krishnamurthy Vaz mein rehna idhar udhar mein movie se title track only on Radio 11.6.3 FM Tanisha aapke saath Bindaas morning chal raha hai yahan par aur bhai thodi kar lete hain weather ki baat. हाँ तो इट इज लाइक ओके ओके राइट नाउ. ठीक है, आज सुबह भी जब मैं घर से बाहर निकली तो ठंडी हवा तो नहीं थी लाइक इट वॉज यस्टरडे, बट इट वॉज नॉट दैट हॉट कि मुझे बाहर निकलते ही रिग्रेट महसूस होने लग जाए. यू नो वैसा सिचुएशन नहीं था, सो इट इज ऑल गुड. एंड राइट नाउ द टेम्परेचर इज 34 डिग्रीज एंड फील्स लाइक 42 डिग्रीज. इट इज नॉट ऑल गुड. अरे यार दिस इज क्रेजी. ओके एंड हवा अभी भी है थोड़ी सी यू नो रफ्तार से 17 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है. सो प्लीज़ बी केयरफुल. अगर कोई एलर्जीज वगैरह है तो उसका ख्याल रखें, मास्क वगैरह साथ लेकर जाएं. आप बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही चाहिए होता है मुझे.

0: घर आया।
1: यार क्या कमाल गाना बनाया ये, आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। द ओनली थिंग इज कि काफी छोटा है ना। वेल कुछ देर में ये सब गाने आने वाले हैं, फिलहाल भेज रही हूँ डिस्को सॉन्ग स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सुंदर रेडियो टू यू बिंदास।

0: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
0: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाओ इस लड़के को।
3: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
0: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
3: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
0: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
0: Brought to you by Riyadhar Medical Center.
4: JCI Accredited Riyadhar Medical Center. Har din aap ki seva mein karirat hai.
5: Visit Riyadhar Medical Center on Searing Road, Doha.
0: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine, 5x more cleaning.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

0: मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
4: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: To be not talking as me, Nazar Batu only on Radio 106.3 FM. Dinisha, aapke saath Bindaas Mornings chal raha hai yahan par. और रिमाइंडर है फॉर ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को रजिस्टर किया था बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब के लिए. सो रजिस्ट्रेशंस तो बंद हो गए, पता ही आपको. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉट द कॉल अभी तक, और जिन्हें नहीं आया है डोंट वरी, आपको आज कॉल आ जाएगा क्योंकि कल सुबह 9 बजे हम मिल रहे हैं रियादा मेडिकल सेंटर में फॉर बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब. बहुत सारा फन होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज प्लान की है इसके लिए. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और हुआ तो मे बी आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट विद द किड्स, बट मजा आने वाला है. इट विल बी यू नो फन फिल्ड मॉर्निंग विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर द किड्स, पर बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा. सो दे गोना हैव फन. सो 9 बजे मिलते हैं कल, आप पहुंच जाइएगा वक्त पे. बाकी सब बढ़िया, हम साथ रहेंगे तो देखो बढ़िया तो होने ही वाला है ना. हां जी, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास. कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.
4: मेरा

0: Danisha.
1: Danisha. You're listening to Radio 106.3 FM. Danisha, aapke saath bindaas morning chal rahe hain yahan par.
2: Wacky wisdom.
1: अच्छा, टेल मी, डू यू रिमेम्बर पहले हम लिविंग रूम को घर में ड्राइंग रूम कहते थे, कुछ लोग अभी भी कहते हैं, राइट? हैव यू एवर थॉट कि ये ड्राइंग रूम टर्म और ये रूम कहाँ से आए? सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट. सो यू नो, बैक इन द डेज कोई अलग अलग रूम्स नहीं होते थे, एक बड़ा सा हॉल होता था, उसी में सब बैठ के एक साथ खा रहे हैं. एंड यू नो, लाइक देर आर नो डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेज. लाइक वी हैव बेडरूम नाउ, वी हैव लिविंग रूम नाउ, वी हैव प्ले रूम नाउ, वी हैव स्टडी. सो यू नो, ये सब पहले नहीं होता था. इट वॉज जस्ट वन रूम, बिग हॉल काइंड ऑफ रूम, एंड वहीं पे सब खाना खा रहे हैं, बैठे हैं एंड स्लीपिंग देयर एंड ऑल. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि जो कमर्शलिज्म, कंज्यूमरिज्म जब हुआ, तो यू नो बहुत सुंदर सुंदर से सोफाज, डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स, ये सब आ गए. एंड नाउ द रिच पीपल वांटेड टू बाय ऑल दैट. बट प्रॉब्लम वाज कि लोग, गेस्ट अगर आ भी रहे हैं तो वो अपने हाथ से ही खा रहे हैं अभी भी, और जब वो हाथ से खा रहे हैं और गंदा हो रहा है, तो वो ना ऐसे एक्सपेंसिव सोफाज और चेयर्स पे अपने हाथ पोंछ देते हैं. बहुत डर्टी हो जा रहा था सब कुछ. एंड द लेडीज वर फ्यूरियस कि क्यों कर रहे हैं ये ऐसे, इनको बोलो सफाई रखे. बट ऑब्वियसली नहीं सुना गया. एंड दैट्स व्हेन दे फाउंड आउट द सोल्यूशन. इंस्टेड ऑफ चेंजिंग यू नो देयर बिहेवियर और मैनर्स, सोल्यूशन ये निकाला कि क्यों ना एक अलग से रूम बनाया जाए जहाँ पे सिर्फ खाना खाया जाएगा. एंड दैट्स हाउ डाइनिंग रूम के. नाउ डाइनिंग के बाद मेन हैड अ हैबिट कि भाई बैठ के थोड़ी देर हम बात करेंगे, हमें अभी नहीं उठना है यहाँ, अपना खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल से चेयर पे हम बैठे रहेंगे एंड वी विल कंटिन्यू टॉकिंग. सो वुमेन वर सपोज टू विदड्रॉ फ्रॉम देयर, दे वर सपोज टू गो टू द अनदर रूम. सो दैट्स हाउ द विदड्रॉइंग रूम केम, जहाँ पर वो खाना खाने के बाद वुमेन वुड विदड्रॉ एंड इवेंचुअली दैट विदड्रॉ में से विद निकल गया and it became drawing room. That's how we got the drawing room. And this is so fascinating, you know, greasy fingers, laziness ki wajah se, we got a drawing room. Ironic, right? Sending an amazing track your way. Stay tuned, Anju Vinda.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: हर सुबह 6 से 10 हर जिस तनिशा को बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास मॉर्निंग
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: दर्शन रावल और जॉनिता गांधी की आवाज में प्रीत रे फ्रॉम द मूवी धड़क टू ऑन रेडियो 106.3 एफएम दनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड यू नो व्हेन योर एम्प्लॉयज, आई एम टॉकिंग टू द एचआर और द बॉसेस ओवर हियर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो दिस वन्स फॉर यू. व्हेन योर एम्प्लॉयज आर यू नो रिलैक्स्ड, उनको थोड़ा सा फन टाइम मिल जाता है दिन में, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है. एंड इन टर्न आपका ही फायदा होता है क्योंकि वो और बेटर काम करने लगते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस का इन्वायरमेंट वैसा ही रिलैक्स, फन और यू नो एनर्जी से भरा हो, तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस, कॉल अस एज इन यू नो हमसे बात करें, आप मैसेज करें 3311106 पर, और ऑल ऑफ सुनो रेडियो नेटवर्क की टीम आएगी आपके ऑफिस यू नो टू हैव सम फन विद योर एम्प्लॉयज. बहुत सारे अमेजिंग गेम्स लेकर, इंटरैक्टिव और फन एक्टिविटीज लेकर हम आएंगे, एंड दोज एक्टिविटीज विल बेसिकली हेल्प ऑल ऑफ योर एम्प्लॉयज टू यू नो री एनर्जाइज, रिफ्रेश देमसेल्व फ्रॉम देयर मोनोटोनस लाइफ यू नो. और जब ये हो जाता है ना, जब आप रिफ्रेश हो जाते हैं, तो जो आपका काम है उसमें फोकस और डेडिकेशन बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है. तो ऑल एंड ऑल आपका ही फायदा है. सो फटाफट से कनेक्ट करें हमसे, मैसेज कीजिए मुझे यहाँ पर 3311106 पर, एंड वी विल कम टू योर ऑफिसेज टू हैव सम फन विद योर एम्प्लॉयज एंड मेक योर वर्क प्लेस मोर फन, फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ प्रोडक्टिविटी. यस, सो द रेडियो जी बिंदास
1: रेडियो 106.3.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा

0: फास्ट मॉर्निंग अर्जुन तमीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Denisha.
1: इशक ज़ादे से सुनीति चौहान और विशाल डडलानी की आवाज में छोकरा जमारे बड़ा ही मजेदार गाना है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है। अब
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी।
1: जी सो आज का जो मेरा वर्ड है इट इज वेरी क्यूट। मतलब कुछ लोग हैं हम सबकी लाइफ में ऐसे यू नो जिनके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। बेसिकली इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कुड बी योर ऑफिस बेस्टी। यस सो द वर्ड इज सिंपैटिको, SIMPATICO, सिंपैटिको, विच बेसिकली मीन्स ऐसे लोग जिनसे मिलते ही यू नो वाइब ऐसे फुल ऑन मैच हो गई है। यू नो दे आर वेरी कंजीनियल, दे आर वेरी अडोरेबल, और आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अलग लेवल की हो गई है। एंड पहली बार मिलते ही आपको लगा कि यार आप बहुत वक्त से इस इंसान को जानते हो। सच पीपल आर कॉल्ड सिंपैटिको। यस
3: तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जान।
1: बड़ा ही कमाल गाना। एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज में।

कह दो प्लीज 3311063 पर. एंड जी ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर कमिंग अप योर वे दिस आवर में, दिस वीक बोलने वाले थे. अब तक खत्म हो गया ना मेरा दिमाग, ऐसे क्रेजी हो गया कि भाई वीकेंड आ गया है, सोएंगे. कल नहीं सोएंगे वैसे, कल हम दिन में सोएंगे क्योंकि कल सुबह तो हम जा रहे हैं बैक टू स्कूल के लिए, रियादा मेडिकल सेंटर में आप लोगों से मिलना है. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट वन. बाकी हु एवर यू नो इन योर लाइफ हैज दैट सिंपैटिको वाला रिलेशनशिप और कनेक्शन विद यू, जरा उन्हें मैसेज करके बता दो कि यू आर इंपॉर्टेंट मेरी जान. सेंडिंग वारू फ्रॉम मिर्जापुर द मूवी, जिसमें श्रेया घोषाल भी हैं और रोमी जी भी हैं. सुन रही है रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: This is Deepika Padukone.
2: Deepika Padukone.
1: Radio Olive 106.3.
3: I'm a number one. Radio Olive.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
0: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha ke saath hai, aap bindaas mornings chal rahe hai yahan par. Aur baat karte hain ki is महीने सितंबर के इस महीने में कतर में क्या क्या अमेजिंग होने वाला है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी चीजें प्लान कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको इसमें से इंटरेस्ट कर रहा है तो. ठीक है, सो 15th एडिशन होने वाला है अरेबियन विमेन एग्जीबिशन का, जो कि 31 अगस्त से शुरू हो चुकी है और तीन दिन बेसिकली, मतलब आज कल और परसों, यू नो, और चलने वाली है. 5th सितंबर को ये खत्म हो जाएगी. DECC में चल रही है, सो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं. हाई एंड फैशन, बिस्पोक एक्सेसरीज, लग्जरी विमेन लाइफस्टाइल कलेक्शन, सब कुछ मिलेगा वहां पे. चेकआउट कीजिए, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और कतर इवेंट शो 2026 चल रहा है 1st से लेकर 5th सितंबर तक, वो भी DECC में चल रहा है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं. वर्चुअसिटी बैटल ग्राउंड भी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, सितंबर जब से आया है. 1st से लेकर 30th ऑफ सितंबर तक है ये, DFC में हो रहा है. एंड देन कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कनरी एग्जीबिशन, ये 8th अगस्त से लेकर 6th सितंबर तक चलने वाली है. कुछ तो गलत लिखा है इन्होंने डेट में, ठीक है, ये कतारा में होने वाला है. एंड देर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यू नो, बिलरबी एनुअल गैदरिंग होने वाली है एजुकेशन सिटी में, दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन DECC में 28 सितंबर से लेकर 3rd अक्टूबर तक चलने वाली है. और लास्ट टाइम मैंने उसे अटेंड किया था एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, सो डू नॉट मिस दैट आउट. बाकी कल क्या हो रहा है पता है ना, कल रियादा मेडिकल सेंटर में हम मिल रहे हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब के लिए. आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एंड आई होप यू आर टू. सी यू 9 AM इन द मॉर्निंग एट रियादा मेडिकल सेंटर. सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: तनिषा
1: ठीक है, अगर सोनू निगम इतने प्यार से बोलेगा तो मैं सोनिया भी बन जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं मुझे यार। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर, और इफ यू वांट टू कॉल मी सोनिया इट्स टोटली अप टू यू। वेल, आज ही हमने केतरी जी की बात करी थी एंड दिस सॉन्ग केम इन माई प्ले लिस्ट, सो या कोइंसिडेंस, गुड वन, गुड वन। ये भी है कि आज वीकेंड है और साथ में मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे इफ यू हैवंट, क्या कर रहे हो यार, जाओ ना जल्दी से फॉलो करो हमें। radioolive.qa इज द हैंडल फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड देन वी आर ऑन यूट्यूब एज वेल, वी आर ऑन स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, एवरीवेयर, सब जगह फॉलो कर लो, ठीक है? बिकॉज वी कीप पोस्टिंग थिंग्स एवरी डे, यू नो, हर एक प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ जाता रहता है, आपसे कुछ मिस आउट हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना। लाइक अभी सोशल मीडिया पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, अब आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपका नुकसान हो गया ना। सो फटाफट से जाओ, पार्टिसिपेट करो उसमें, चेकआउट द पोस्ट, इंटरेक्ट कीजिए उसके साथ, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, एंड यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग रियली एक्साइटिंग मेरी जान। फिलहाल बड़ा ही कमाल गाना भेज रही हूँ आपके लिए, एकॉन और हमसिका की आवाज में, रावण से चमक चलो। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ओलिव, बिंदास मेरी जान।

जबरिया जोड़ी से खड़के क्लासी अमेजिंग ट्रैक यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं। यहाँ पर 9:51 हो चुका है क्लॉक में और वक्त हो गया है मेरे जाने का। वीकेंड इज हियर, सो मैं जाते जाते आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि चिल करने का, रेस्ट करने का जो भी प्लान किया है वो बिंदास करो, बस स्ट्रेस नहीं लेने का है। काम का स्ट्रेस हम काम के वक्त लेंगे, छुट्टी पे नहीं, उससे जगह नहीं देनी है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना, ऑब्वियसली स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, बट खुद के साथ वक्त बिताना भी बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ ट्राई, यू नो 15-30 मिनट्स हो सके तो निकालो अपने लिए इस वीकेंड पर और अपने साथ बिताओ और इसको एक हैबिट बना लो। अगर रोज़ कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो कुछ दिन में एक बार ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और राइट नाउ जो हो रहा है ना, लाइक एवरीबडी इज पुटिंग प्रेशर ऑन ईच अदर टू कम्पीट फॉर समथिंग विच वी डोंट इवन नो कि हम किस चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं। सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर बैठे हुए दिमाग में, उसको कम करने के लिए खुद के साथ बैठना, खुद के साथ चीज़ें समझना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई कीप फोर्सिंग यू फॉर दिस। बाकी हैव एन अमेजिंग वीकेंड यार, चिल करो, मजे करो, और मिलते हैं संडे को सुबह 6 बजे यहाँ रेडियो पे। लेकिन कल रियादा मेडिकल सेंटर में सुबह 9 बजे मिल रहे हैं विद ऑल द पीपल एंड द किड्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर बैक टू स्कूल जूनियर के क्लब। सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।

फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस।

हेलो, आई नो थर्सडे की इस दोपहर में एक अजीब सी खुशी होती है। काम टेक्निकली खत्म नहीं हुआ है लेकिन दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है कि आज वीकेंड है। लैपटॉप सामने है, अपना अपना काम चल रहा है, आप ड्राइव कर रहे हो या फिर मेल लिख रहे हो, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि यार फ्राइडे को क्या करना है, कहाँ जाना है, घर पर रहना है, मूवी देखनी है या बस 12 घंटे सोना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीकेंड सिर्फ कैलेंडर पर फ्राइडे से शुरू नहीं होता, हम उसे दिमाग में पहले ही शुरू कर लेते हैं। टेक्निकली थर्सडे को ही हम अपने आप को मेंटली परमिशन देते हैं कि बस ये लास्ट काम, फिर वीकेंड मेरा। और शायद इसीलिए ना थर्सडे का मूड इतना अलग होता है। मतलब संडे को हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और थर्सडे को आते ही फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि यार दिस इज द फ्यूचर यार। सो आज का सवाल बहुत सिंपल है, आपका वीकेंड ऑफिशियली कब शुरू होता है? थर्सडे इवनिंग से ही या फिर फ्राइडे सुबह, जब आप सुबह लेट उठते हो, या फिर आपको लगता है कि यार फ्राइडे को बड़ा रिलैक्स रहता है, फ्राइडे लंच के बाद जब आप फाइनली ये कहते हो कि बस अब काम बंद और चलो थोड़ा सा आराम करते हैं। सो व्हाट्सएप करके बताओ कि एक्चुअली आपका जो वीकेंड है वो कब शुरू होता है। मेरा वीकेंड ना मेंटली अभी स्टार्ट हो चुका है, और फिजिकली अगर मैं बात करूं कि आज शाम को 6 बजे जब मैं ऑफिस से निकलूंगी तो बस मेरा वीकेंड हो चुका है शुरू। और सीधे स्टार्ट होता है थर्सडे से लेके फिर सीधे मैं काम करने के लिए जो मेरा दिमाग है वो वापस चलता है संडे की सुबह। सो आप मुझे बताइए आपका वीकेंड कब स्टार्ट होता है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास
2: टाइम चेक
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: नानादल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोल।
3: Ready?
4: Ready
3: to learn,
4: yes.
3: To play,
4: absolutely.
3: To grow
4: with Maserati.
5: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
6: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेबनीज़ एग्स।
5: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद नेस्टो।

0: एक सवाल है, बचपन में सैटरडे और संडे इतने लंबे क्यों होते थे? सैटरडे मॉर्निंग ना कार्टून्स, फिर क्रिकेट, फिर कॉलोनी में साइकिल, घर का स्पेशल ब्रेकफास्ट, शाम को दोस्त, और रात को मतलब ऐसे होमवर्क याद आ जाता था कि यार सुबह स्कूल जाना है। और आज सैटरडे ना मतलब ऐसा लगता है कि यार ये आपका दिन है। आंख खुलती है मेरी तो 11 बजे, ब्रेकफास्ट, फोन, ग्रॉसरी, लॉन्ड्री, थोड़ा नेटफ्लिक्स, एक फोन कॉल, एक नैप, और सडनली वीकेंड खत्म। इतनी जल्दी वीकेंड कैसे खत्म हो जाता है? सो बेसिकली आज थर्सडे है, एंड आई नो आज से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। शाम से आपके बहुत सारे प्लान होंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल है। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो दुनिया में बहुत कुछ पहली बार हो रहा होता था, नए एक्सपीरियंसेस, नए जगह, नए लोग। ब्रेन के पास ना मेमोरी इसके ज्यादा मेकर्स होते थे। बड़े बड़े मतलब ऐसे चीजें होती थी और हमें लगता था यार वीकेंड कितना प्यारा है। पर बड़े होते होते रूटीन थोड़ा बढ़ जाता है। अब ऐसा लगता है कि यार ये संडे को हमारा वर्क वीक स्टार्ट हो जाता है, और वीकेंड भी कभी कभी मतलब ऐसे रिपीट मोड में चला सा जाता है। शायद इसीलिए ना बचपन का वीकेंड बहुत लंबा लगता था। टाइम नहीं बदलता था, बस हमारी जिंदगी में थोड़ी नॉवल्टी ज्यादा थी। आज एक नॉस्टैल्जिया वाला व्हाट्सएप सवाल पूछती हूँ आपसे कि आपके बचपन का परफेक्ट वीकेंड क्या होता था? कार्टून, क्रिकेट, या फिर कोई नानी दादी का घर, या फिर मम्मी के हाथ के कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट या लंच जो आपको बहुत पसंद होता था। सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, और शो का नाम है लाइफ मस्त है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

वीकेंड का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? संडे. नहीं नहीं, कभी नहीं. मतलब कभी हम खुद भी दुश्मन बन जाते हैं. सोचिए, मतलब यहाँ पे वीकेंड तो स्टार्ट हो गया है थर्सडे से, राइट? और थर्सडे शाम के बाद फ्राइडे सैटरडे आपकी छुट्टी होती है. संडे को आप को वापस ऑफिस जाना होता है. सोचिए, सैटरडे है, आप सोफे पर बैठे हो, मूवी देख रहे हो और दिमाग में अंदर एक छोटा सा मैनेजर है. किचन क्लीन करना है, बुक पढ़नी है, वर्कआउट करना है, कल से डाइट शुरू करनी है, सीवी अपडेट करना है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें. और आप बेचारे मूवी देखते हुए भी गिल्ट में जा रहे हो. साइकोलॉजिस्ट ने अब इस फीलिंग को नाम दिया है लेजर गिल्ट. यानी फ्री टाइम एंजॉय करते वक्त गिल्ट या फिर मतलब अनइजीनेस की फीलिंग. 2026 में पब्लिश्ड एक स्टडी ने चार स्टडी के थ्रू इस फिनोमिनन को एग्जामिन किया और रिसर्चर्स ने ये बताया कि लोग एवरेज, मतलब ऐसा है कि अराउंड 40% लेजर ओकेशंस पर लेजर गिल्ट एक्सपीरियंस करते हैं. और जिन लोगों में ये टेंडेंसी ज्यादा थी उन्हें अपने फ्री टाइम से साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी कम मिल रहे थे. ये सब ना मैं पहले कर चुकी हूँ. मतलब कई बार ऐसा होता था कि मेरा पढ़ाई का टाइम होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, पर मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाती थी और फिर मैं इस गिल्ट में जाती थी. मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम रिलैक्स नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि रिलैक्स करते वक्त भी हम मतलब खुद को परमिशन नहीं देते. सो इस वीकेंड एक काम कीजिए, अगर आप सोफे पर हैं तो सोफे पर ही रहिए. और हर मिनट प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है. आपको वीकेंड में सबसे ज्यादा गिल्ट ना किस चीज का होता है? सोने का, नेटफ्लिक्स पे चिल करने का, शॉपिंग करने का, या कुछ भी नहीं करने का? व्हाट्सएप करके बताइए 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: Clear.
1: Hi, मैं हूँ सारिका. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क. रेडियो

सो इस वीकेंड प्लानिंग के बीच में एक बहुत प्यारा सा अनाउंसमेंट है, सुन लीजिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। स्कूल वापस स्टार्ट हो रहे हैं, बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज, बैग्स, सब चीजें ना रेडी करनी है, बच्चों को नई नई चीजें शॉपिंग करवा रहे हैं, स्कूल चालू हो गए हैं, हो रहे हैं, पर इसी बीच में हेल्दी हैबिट सिखाना भी बहुत जरूरी है। सो इसीलिए रेडियो ऑलिव और रियादा मेडिकल सेंटर लेकर आ रहे हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब, विच इज टुमारो, मतलब कल ही है। लेकिन ये कोई बोरिंग हेल्थ लेक्चर नहीं है, यहाँ ना बच्चे गेम्स खेलने वाले हैं, एक्टिविटीज करने वाले हैं, फन लर्निंग होने वाली है, जिससे बच्चे सीखेंगे हेल्थ और हाइजीन के बारे में और सीखेंगे। और यू नो गोल ही उन्हें ये बनाना है कि भाई हेल्थ सुपर हीरोज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे 7 से 10 साल के बीच में है, तो आप नोट कर लीजिए कि टुमारो यानी फ्राइडे को सुबह 9 बजे से वेन्यू है रियादा मेडिकल सेंटर, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल इजी और फ्री है। आपको क्या करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है OR स्पेस आपके बच्चे का नाम और भेज देना है 3311063 पर। सो पेरेंट्स से तो मैं बस यही कहूंगी कि इस फ्राइडे बच्चों को सिर्फ स्कूल रेडी नहीं करना बल्कि हेल्थ और हाइजीन के लिए भी सुपर रेडी बनाना है। सो रेडियो ऑलिव और रियादा मेडिकल सेंटर का बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब जरूर आइए, ज्वाइन कीजिए, सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, क्योंकि हेल्थ हैबिट अगर बच्चों में फन के साथ सीख जाए तो लाइफ भर साथ चलती है। सो फटाफट से रजिस्टर कीजिए, नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

सो नाउ आई हैव वन कन्फेशन भाई, वीकेंड आते ही मैं अपने अलार्म को छुट्टी दे देती हूँ, मतलब आज शाम को मैं अपना दो दिन के लिए अलार्म बंद कर दूंगी। सो होता यह है कि संडे से लेके थर्सडे तक अलार्म के साथ एक इमोशनल यू नो कनेक्शन बना हुआ होता है, बस 5 मिनट और प्लीज कल से पक्का टाइम पे उठ जाऊंगी, और फिर ये सब अकेले अकेले अपने दिमाग में चल रहा होता है। और फ्राइडे मतलब ऐसा होता है कि थर्सडे नाइट को ही मैं मतलब सारे अलार्म्स बंद कर देती हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंगली रिसेंट रिसर्च ने वीकेंड स्लीप को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा है। सो कोरिया में अराउंड 41,000 एडल्ट्स के डेटा पर एक स्टडी ने देखा कि मॉडरेट वीकेंड कैचअप स्लीप्स जो है वो एवरेज अराउंड 1 hour 27 minutes एक्स्ट्रा है, हाई ब्लड प्रेशर के लोअर लाइकलीहुड से एसोसिएटेड थी। लेकिन बहुत ज्यादा यानी कि 4 घंटे भी ज्यादा एक्स्ट्रा स्लीप उल्टा स्लीप रिदम को डिस्टर्ब कर देती है। सो अगर आप वीकेंड पे सो रहे हो 2-4 घंटे ज्यादा, तो मैं आपको बता दूं कि 1 hour 27 minutes एक्स्ट्रा इज फाइन, बट अगर आप 4-6 घंटे ज्यादा सोने के बारे में सोच रहे हो तो दिस विल डिस्टर्ब योर वीक वर्क ऑल्सो। तो साइंस ये नहीं कह रही कि सैटरडे को या फ्राइडे को दोपहर तक यू नो सो जाओ, बस ये कह रही है कि ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स होकर उठो, अलार्म ना बजे, सुबह 8 की जगह आप 9 बजे तक उठ जाओ। अगर वीकडेज में स्लीप कम हो गई है तो थोड़ा रिकवरी स्लीप लेना ऑटोमेटिकली लेजीनेस नहीं है, बट आप मुझे बताइए कि आपके वीकेंड वेकअप टाइम क्या होता है, मतलब आप यूजुअली कितने बजे उठते हो और फिर वीकेंड पर आप कितने देर तक सोते हो, या जब आंख खुलेगी तब देखेंगे वाले लोगों में से हो आप। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और नंबर है 3311063।

0: अब मिलते हैं भाई कुछ स्पेशल लोगों से. यस, वीकेंड पर खुद से लड़ने वाले लोग जो संडे को कहते हैं कि टाइम नहीं है, मंडे को कहते हैं कि आज बहुत काम है, ट्यूसडे को कहते हैं कि कल से पक्का करूंगा, और वेंसडे आते आते तक कहते हैं कि वीकेंड में कर लेंगे यार, और फिर फ्राइडे आ जाता है और फिर रनिंग शूज, जिम, साइकिलिंग, स्विमिंग, बस ये सोचते रहते हैं और पूरा हफ्ता रिकवर कर लेंगे कहते हैं. एक्चुअली वीकेंड के जो लोग हैं ना, ये जो वीकेंड के बारे में ऐसे सोचते हैं, प्रॉपर रिसर्च टर्म है इन लोगों के लिए. उन लोगों को अपनी वीकली फिजिकल एक्टिविटी के बाद बड़ा हिस्सा एक दो दिन में करने की आदत हो जाती है. उनको लगता है कि बस फ्राइडे को अच्छे से जिम चले जाते हैं, साइकिल कर लेते हैं, स्विमिंग चले जाते हैं, उनको लगता है पूरा हफ्ता इज फाइन. सो 2025 की एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ने 18 पब्लिशर्स के साथ, मतलब 18 पब्लिकेशन को एनालाइज किया और ये देखा कि लोग जो हैं वो वीकली फिजिकल एक्टिविटी को एक दो दिन में अचीव करते हैं. उनमें हेल्थ आउटकम्स जो हैं वो इनएक्टिव लोगों के कंपैरिजन में बेटर थे. रेगुलर एक्टिविटी और वीकेंड पैटर्न के एसोसिएशन ब्रॉडली कंपेयर्ड भी है. मतलब आप सोचिए, आप पूरे हफ्ते कुछ नहीं कर रहे हो, आप सीधे फ्राइडे को जाते हो या सैटरडे को दो दिन जब आपको मिलते हैं तब आप रनिंग शूज पहनते हो, जिम जाते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्राइडे को ही बॉडी और सैटरडे को ही बॉडी को आपको टाइम देना है. एक्चुअली आपको हर दिन थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, बट इफ नॉट देन फ्राइडे सैटरडे भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. सो परफेक्ट रूटीन पॉसिबल ना हो तो भी वूमेन को कम्प्लीटली छोड़ना जरूरी नहीं है. सो यू टेल मी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों में से हैं या सिर्फ वीकेंड पर बाहर निकलते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

सो एक चैलेंज देती हूँ, इस वीकेंड एक घंटा फोन के बिना बिताइए। देखो वीकेंड तो आ ही गया है, थर्सडे है, आज शाम के बाद आपका वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिस से जो काम है वो आप ऑफिस में ही करके जाओगे। टेक्निकली आई नो काम तो कभी नहीं खत्म होता, लेकिन आपको कोई परेशान तो नहीं करता, राइट? सो बस एक घंटे नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो रील्स, नो चेकिंग हु सॉ योर स्टेटस, और कोई मेल विल भी चेक नहीं करना। और मतलब अभी आपके दिमाग में एक थॉट आया होगा कि बस एक घंटा, पर क्यों? एग्जैक्टली, फोन हमारे लिए ना एक सिर्फ डिवाइस नहीं है, बोर्डम आया है तो फोन, खाना खाया तो फोन, कुछ अच्छा देख लिया तो फोन, लिफ्ट में खड़े हैं तो फोन, बाथरूम में गए हैं तो भी फोन लेकर चले जाते हैं लोग। और कभी कभी फोन यूज करते करते ना मतलब फोन में ही देख रहे होते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना हो गया। सो भाई एक 2025 की एक रैंडम रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें 787 पार्टिसिपेंट्स को डिजिटल डिटॉक्स प्लानिंग इंटरवेंशन दिया गया था। और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी कि सिर्फ प्लानिंग कर देने से टोटल स्मार्टफोन यूज में सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं आया, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं अपना फोन यूज कंट्रोल कर सकता हूं, ये वाली जो फीलिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकालती है। तो शायद डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ना फोन तोड़ देना नहीं है, बस फोन को हर खाली सेकंड भरने से रोकना है। सो आई विल से कि अगर अब आपको ऐसा लगे कि यार हर मिनट में आप फोन निकाल लेते हो, तो रुकिए, फोन को थोड़ा सा ना बैग में ही रखिए, ऐसे ढूंढना पड़े जब फोन बजे तब, ऐसा आदत डालिए। आपको फोन सबसे ज्यादा कब याद आता है? बोर्डम में, खाना खाते टाइम पे, या फिर आपको लगता है कि यार सोने से पहले तो एटलीस्ट कुछ देखना बनता है? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, और शो का नाम है लाइफ।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

फ्राइडे का नाम सुनते ही बॉलीवुड का एक सीन दिमाग में आ जाता है, विच इज पिक्चर रिलीज हो गई। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए फ्राइडे ट्रेडिशनली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि ना फ्राइडे रिलीज का मतलब होता है ओपनिंग वीकेंड के 3 इंपॉर्टेंट दिन। सो इंडिया में फ्राइडे रिलीज का पैटर्न बहुत दशकों से चला आ रहा है। फ्राइडे रिलीज ट्रेडिशनली मतलब ऐसा माना जाता है हॉलीवुड इन्फ्लुएंसर और हॉलीवुड को इन्फ्लुएंस और वीकेंड बॉक्स ऑफिस लॉजिक दोनों ने शेप किया है। और हमारे लिए फ्राइडे का मतलब होता है शो कितने बजे का है, सैटरडे का मतलब है पिक्चर कैसी थी, और संडे का मतलब कि भाई अब तो बहुत लेट हो गया, बट मतलब स्पेशली व्हेन यू आर इन कतर तो आपको लगता है कि सैटरडे तक सब निपटा लें। पर जब इंडिया में होते थे तो संडे को जाते थे और मूवी देखकर आते थे, ऐसा लगता था बस संडे इज़ फॉर मूवी ओनली, और बाद में अगला दिन ऑफिस। भाई स्पॉइलर मत देना, हर कोई यही कहता है। सो अगर आप भी वीकेंड पे कोई मूवी देख के जा रहे हो तो प्लीज़ ऑफिस में सबको स्पॉइलर मत दीजिएगा। हो सकता है इस वीकेंड वो नहीं देख पाए पर अगले वीकेंड उनका प्लान बन जाए। अब ओटीटी ने फ्राइडे को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। पहले फ्राइडे को ना हम थिएटर जाते थे, अब फ्राइडे को सोफे पर बैठकर हम बोलते हैं कि यार नेटफ्लिक्स पे क्या नया आया है। बाय द वे आज नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी गांधारी जो है वो आ चुकी है, आई विल टेल यू अबाउट दैट। लेकिन मतलब एंटरटेनमेंट बदला है लेकिन फ्राइडे का इमोशनल इंपॉर्टेंस जो है वो अभी भी सेम है। सो यू टेल मी, आपके लिए फ्राइडे एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? थिएटर की पॉपकॉर्न वाली फीलिंग या फिर घर पर सोफे पर बैठकर ओटीटी को स्क्रॉल करना? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है रेडियो।

0: हो लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

0: सो आज ना वीगन की बात कर रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग बुक भी है यहाँ पर, शार्लेट वुड की द वीकेंड। नाम सिंपल है द वीकेंड, लेकिन स्टोरी सिंपल नहीं है। तीन ओल्डर वुमेन अपनी एक क्लोज फ्रेंड के यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद हाउस में एक वीकेंड स्पेंड करने के लिए उनको मिलता है, घर को एम्प्टी करने के लिए, क्योंकि अब वो घर खाली करना होता है। और फिर एक नॉर्मल सा वीकेंड, धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप, एजिंग, मेमोरीज और उनके बीच के सालों पुराने इमोशंस को ना सामने लेकर आता है। मुझे इस किताब का आइडिया ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हम वीकेंड को यूजुअली स्केप समझते हैं ऑफिस से, रूटीन से, डेडलाइन से, लेकिन कभी कभी वीकेंड स्केप नहीं होता। वीकेंड वो होता है जब हम फाइनली उन चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं जिन्हें वीकेंड में इग्नोर कर दिया जाता है। किसी दोस्ती से आप दूर जा चुके हो तो किसी दोस्त को डिस्टेंस आ गया होता है, फैमिली के साथ कुछ यू नो बदल गया होता है, या खुद के साथ कुछ बदल गया है, तो वीकेंड में वो सब थोड़ा लाउड सुनाई देने लगता है। सो आई विल से कि आज का सवाल है आपका थोड़ा सा डीप, कि अगर आपको किसी एक पुराने दोस्त के साथ पूरा वीकेंड बिना फोन, बिना काम, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन स्पेंड करना हो तो वो आप क्या करोगे। बाय द वे, आई रिमेंबर जब हम अपने कॉलेज से पास आउट हुए थे तो हमें वीकेंड्स मिला करते थे टू सेटअप एवरीथिंग, लाइक कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का रूम था, या फिर जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के जॉब करने गए तो वीकेंड पे हमें अपना नया घर ढूंढना होता था, उसे सेट करना होता था, और वो वीकेंड बहुत स्पेशल हुआ करते थे। यू टेल मी कि आपको अगर ऐसा एक वीकेंड मिलता है तो आप क्या काम करोगे, कैसे स्पेंड करोगे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
1: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप ना.

कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि घर पर पूरा वीकेंड निकल जाता है, फ्राइडे सैटरडे और बस खत्म, लेकिन एक छोटी सी ट्रिप कर लो फ्राइडे, यू नो थर्सडे को नाइट को निकल जाओ, होटल में चेक इन करो, सैटरडे फ्राइडे मस्त इंजॉय करो नई जगह, और सैटरडे को ब्रेकफास्ट करके वापस आप इवनिंग तक घर आ जाओ, और संडे से वापस ऑफिस, और लगता है यार 3 दिन में कितना कुछ हो गया। सो एक्चुअली यहाँ एक इंटरेस्टिंग डील है, नोवेल्टी। जब हम रूटीन में होते हैं तो बहुत सारे मोमेंट्स एक जैसे होते हैं, ब्रेन को हर चीज को अलग अलग मेमोरेबल इवेंट की तरह स्टोर करने का रीजन कम मिलता है, लेकिन नई जगह, नया खाना, नई रोड, नया एक्सपीरियंस सडनली मेमोरी में ज्यादा चैप्टर्स बन जाते हैं। इसीलिए कभी कभी वीकेंड को लंबा करने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स नहीं बल्कि एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं। और कतर में तो कितने स्टेकेशन है यार, हर स्टेकेशन पे कुछ नया सीखने को मिलता है और हर जगह कुछ ना कुछ ऑफर, और एक्सपीरियंस का मतलब एक्सपेंसिव हॉलीडे नहीं होता। कभी किसी नए कैफे चले जाइए, कभी किसी नए पार्क में वॉक कर लीजिए। अभी तो यहाँ पे कितने एसी वाले पार्क्स आ गए हैं, आपको ऐसा भी नहीं है कि गर्मी में वॉक करनी पड़ेगी। कभी घर में कुछ पहली बार कुक कर लीजिए, जो आपको बहुत टाइम से खाने का मन करता है उसे ट्राई कर लीजिए। बस रूटीन से एक छोटा सा डाइवर्जन की जरूरत है। सो इस वीकेंड का सवाल भी यही है कि आप वीकेंड को कैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं, अपनी फेवरेट सोफे पर या किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पर। व्हाट्सएप करके बताइए 3311063। You are listening Radio Olive. मैं हूं मुस्कान। Stay tuned, Jio, Bindaas.

0: स्कूल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा, कतर।

सो अब आते हैं वीकेंड के उस पार्ट पर जिसके बारे में हम एक्चुअली थर्सडे को बात करना शुरू कर सकते हैं, विच इज संडे इज स्कैरीज। मतलब संडे का नाम आते ही ऐसा लगता है कि बस यार अब सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, अलार्म कितने बजे का लगाना है, रात को मतलब सैटरडे को ये सब दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाता है और सैटरडे की रात को आपका वीकेंड खत्म हो जाता है और 10 बजे तक ऐसा लगता है कि मेंटली अब हम संडे में पहुंच चुके हैं, रात के 10 बजे हम अगले दिन सुबह में पहुंच जाते हैं। लेकिन सोचिए हमारे पास फ्राइडे और सैटरडे के 2 दिन पूरे होते हैं और हम उनमें से कुछ वक्त यू नो संडे की टेंशन में ही ऑलरेडी स्पेंड कर देते हैं। सो इस बार एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जब सैटरडे आए तो फ्राइडे और सैटरडे को जब आप इंजॉय कर रहे हो तो संडे को ना टेम्परेली मतलब ऐसा समझिएगा है ही नहीं। अब सीधे ऐसा होगा कि ईमेल्स आएंगे, काम आएगा, अलार्म बजेगा, तभी आप याद कीजिएगा कि आपको ऑफिस जाना है। लेकिन वीकेंड तो दोबारा नहीं आएगा ना, स्पेशली ये वाला। इसीलिए वीकेंड को सिर्फ छुट्टी मत समझिए, ये वो दिन है जहां आप एम्प्लॉय नहीं है, आपकी डेजिग्नेशन नहीं है, डेडलाइंस नहीं है, बस आप हैं। तो आप बताइए कि आपके वीकेंड का वो एक नॉन नेगोशिएबल क्या है, स्लीप, फैमिली, फ्रेंड्स, मूवी, फूड, या फिर बस प्लीज मुझे 2 दिन किसी से फोन पे मत बात करने दीजिए, मतलब खाली रहने दीजिए, वो वाले कैटेगरी में आते हो आप। बाय द वे बताना जरूर मुझे व्हाट्सएप पे 3311063 इज माय नंबर। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल फ्राइडे है एंड एंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव पर सुपर हिट गाने। और जो भी आपका वीकेंड प्लान हो इस बार उसमें थोड़ा सा वक्त खुद के नाम भी रखिए। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa. Nesto,
2: all that you need. Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
3: अरमान मलिक।
4: मैं number one.
2: 106.3 FM. Radio Olive, Geo Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm number one.
0: Olive Music Marathon. 1 hour. 1 hour. Non-stop, back to back.

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
2: उफ, सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine, 5x more cleaning.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को। एक साथ बैठकर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਤੂੜਾ।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: बिंदास अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
3: Hi everyone, I am Arman Malik. 106.3 FM, Radio Olive. Jio Bindas.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में बात करना चाहूंगा जिसका शो देखने के लिए खुद स्टैंड अप कॉमेडियंस जाते हैं, और उनका नाम है मानिक मान्हा करके। ये एक दिल्ली बेस्ड कॉमेडियन है, काफी बढ़िया कॉमेडी करते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये इकलौते ऐसे कॉमेडियन हैं जिनको सोशल मीडिया का क्रेज नहीं चढ़ा है। इन्होंने गिन के 4 या 5 प्रोबेबली 6 वीडियोस डाली होंगी अपने यूट्यूब चैनल में। 6 के 6 वीडियोस सुपर हिट, हर कोई इन्हें पसंद करता है, मगर इनका लाइव शो हमेशा बहुत ही बढ़िया टर्नआउट जो है एक्सपीरियंस करता है। बैंगलोर में शो करने जाते हैं, 500 टिकट बेचते हैं। दिल्ली NCR में शो करते हैं, आराम से 200-300 टिकट बेच देते हैं। तो काफी क्रेज है इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडी सर्कल में इनका। मगर ये एक ऐसे इंसान है जिनकी कॉमेडी काफी इंटेलिजेंट है, काफी लेयर्ड है, जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं इन्हें। और यहाँ पे एक और स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में बात करना चाहूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात है।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। थोड़ी देर पहले हमने स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बात की थी, स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में बात की थी, मानिक मान्हा के बारे में मैंने आपको बताया था, और एक और स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा, वो है जाकिर खान। हम सब जाकिर खान को जानते हैं, पसंद करते हैं, मगर जाकिर खान को लोग क्यों पसंद करते, कभी आपने सोचा है कि क्या है उनकी कॉमेडी में इतना खास? सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन से भी ऊपर काफ़ी बढ़िया लेवल के स्टोरी टेलर हैं, ठीक है। उनकी कहानियों में कॉमेडी बसती है, मगर सबसे खास बात यह है कि जाकिर खान जब भी कोई कहानी सुनाता है ना, उनकी कहानियों में कहीं ना कहीं हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी मिल जाती है, कहीं ना कहीं हमें खुद की झलक वहाँ पे जो है मिल जाती है, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं उनकी कहानियों में हमें सुनने को मिलता है। तो बेसिकली हमारी कहानी जो है उनकी ज़ुबान के थ्रू हम सुनते हैं, इसलिए एक अलग लगाव जाकिर खान के साथ है। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं विधु विनोद चोपड़ा के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। उन जितनी ओडासिटी मुझे लगता है शायद किसी डायरेक्टर में होगी, क्योंकि एकलव्य मूवी में उन्होंने एक ऐसा सीक्वेंस रेडी किया था जो सही में किसी फिल्म मेकर ने इंडिया में अटेम्प्ट किया होगा। मूवी में एक ऐसा सीन आता है जहां पे अमिताभ बच्चन और जिमी शेरगिल के बीच में वार्तालाप चलता है और वो इतना इंटेंस और इंटरेस्टिंग सीन होता है कि ऑलमोस्ट 60 सेकंड तक स्क्रीन ब्लैंक होता है और कोई आवाज नहीं आती। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस सीन को देखते हुए ऑडियंस भी अपने सांसें जो है उन्हें थाम लेती है, वो भी चुप से हो जाते हैं, एकदम कॉशियस से हो जाते हैं कि क्या होगा आगे जानने के लिए। और ये सीन देखने के लिए आप एकलव्य मूवी जरूर देखिएगा विधु विनोद चोपड़ा की। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: 93FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो मेरे पास एक सवाल है, एक वर्क प्लेस में सबसे बढ़िया चीज आप क्या कर सकते हो? रिजाइन कर सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, नहीं रेजिग्नेशन नहीं, मगर सही में एक ऐसी चीज जो अपने वर्क प्लेस में आप कर सकते हो जिससे सही में आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, साथ ही साथ आप सक्सेसफुल होने के चांसेस अपने और ज्यादा बढ़ा दोगे। वो चीज बहुत सिंपल है मगर काफी इफेक्टिव है, और वो है अपने दिन को प्लान करना और प्रॉपर प्रायोरिटीज को सेट करना। ये जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आपके ऑफिस की लाइफ जो है और सिंपल हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी, काफी प्रोडक्टिव भी हो जाएगी। मगर एक और चीज आप कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के माहौल को बढ़िया बनाने के लिए, पता है क्या? जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यहाँ पे हम गाने प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
2: उफ, सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन, बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aap ki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine, 5x more clean.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे उस चीज के बारे में हम बात करने वाले थे जो आपके वर्क प्लेस में सही में बहुत बढ़िया बदलाव लेकर आ सकता है, काफी फन एटमॉस्फेयर लेकर आ सकता है। वो है रेडियो ऑलिव की टीम को अपने ऑफिस में इन्वाइट करना हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। जी हाँ, हैप्पीनेस लॉन्च में हम आपके ऑफिस आएंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, फन गेम्स खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, पूरे माहौल को बढ़िया बना देंगे, आपके स्ट्रेस टेंशन प्रेशर को बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाल देंगे, आपको रिचार्ज करेंगे और रीएनर्जाइज कर देंगे। तो हैप्पीनेस लॉन्च के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज भेजना है 3311063 पर HL स्पेस अपने कंपनी का नाम, और हमारी टीम से हमारा एक टीम मेंबर जो है आपको कॉल करेगा, बात करेगा, डिटेल्स मांगेगा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में बात करने वाले हैं उस ड्रिंक के बारे में जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। वो है कोका कोला। जी हाँ, 1886 में डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन जो है वो जो एक फार्मासिस्ट थे अटलांटा में, वो एक रेमेडी बनाने की कोशिश कर रहे थे सर दर्द और एग्जॉशन के लिए। उन्होंने एक्सीडेंटली एक ऐसा सिरप क्रिएट किया जिसको कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स करने के बाद वो वर्ल्ड का सबसे फेमस बेवरेज बना, जिसका नाम है कोका कोला। जी हाँ, इसका ओरिजिनल इंटेंशन जो था वो मेडिसिनल था, मगर ये काफी पॉपुलर एक सॉफ्ट ड्रिंक बन गया जल्दी से ही, और पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स में से एक हो गया है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Pagpagpag. Sunte and number one radio station. Radio Olive
1: 106.3 FM.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
4: Hey, this is Liana D'Cruz.
5: This is me, Hrithik Roshan.
6: Hi, I'm Alia Bhatt.
7: Hi, I'm Vivekanand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे मैं एक चीज ऐसे सोच रहा था, ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारतें करता था उस टाइम पे, जब बर्थडे मनाते थे तो उसका एक सेट पैटर्न था। हर घर में एक ही पैटर्न होता था, केक बदलते थे मगर पैटर्न बहुत सिंपल था, सेम था। जब मैं बोलूंगा आपको याद आएगा, कहीं ना कहीं आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। वो पेपर प्लेट्स होते थे, हम जाते थे और बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को ऐसे टोपी बनाते थे, वो कोन वाली जो टोपी होती थी, ठीक है। केक आता था, मोस्टली वैनिला केक या चॉकलेट केक आता था। कभी कभी कुछ बड़े मतलब अमीर लोग के घर जाते थे तो थोड़ा फैंसी हो जाता था, मगर बाकी जो नॉर्मल हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग थे उनके घर जाओ तो या तो ब्लैक फॉरेस्ट या वाइट फॉरेस्ट या फिर वैनिला केक या चॉकलेट केक, ये होता था मेनली, ठीक है। और बाकी इस पैटर्न में आता है उस पेपर प्लेट में एक समोसा, थोड़े पोटैटो चिप्स, थोड़ी नमकीन, केक का एक टुकड़ा और एक ड्रिंक। कोका कोला हो सकता है, फैंटा हो सकता है, स्प्राइट हो सकता है, माउंटेन ड्यू हो सकता है, मगर ये सेट पैटर्न था। ये सेट पैटर्न हर घर में था, हर कोई इस पैटर्न को फॉलो करता था, मगर आजकल के बर्थडे सेलिब्रेशंस में ये चीज नहीं है।

0: पर मुझे सोच के बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरे भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन में ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े टाइम के बाद तो उसने बोला कि घर में मत सेलिब्रेट करो, मुझे पैसे दे दो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके कहीं और से खाना खा लूंगा। और मुझे लगता है कि आजकल ये चीज़, ये ट्रेंड जो है कुछ टाइम से शुरू हो चुका है कि फ्रेंड्स के साथ बाहर चिल करना। पहले हमारे घर वाले पूरे एक इवेंट की तरह उसे मनाते थे कि हाँ भाई आज तो लड़के का बर्थडे है, आज तो स्पेशल करना चाहिए करके। मगर अब कहाँ वो स्पेशल चीज़ें, कहाँ वो पेपर प्लेट में समोसे या फिर पेटीज या फिर ये आलू चिप्स, ये सब आते हैं। अब तो सब बदल गया भाई। वैसे बदलाव ही संसार का सार है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
0: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाओ इस लड़के को।
3: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
0: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
3: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
0: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
0: Brought to you by Riyadhar Medical Center.
4: JCI Accredited Riyadhar Medical Center. Har din aap ki seva mein karirat hai.
5: Visit Riyadhar Medical Center on Searing Road, Doha.
0: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine, 5x more cleaning power.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो यही है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, जानी तो क्या किया, सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे, सर्च कीजिए radioolive.qa, फॉलो बटन दिख रहा है तो प्रेस कीजिए, फॉलोइंग दिख रहा है तो कुछ मत कीजिए, उसे ऐसे ही रहने दीजिए। हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, हमारे पोस्ट को चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी डालिए इंस्टाग्राम में, वीडियो बना के टैग कीजिए हमें, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो गिफ्ट जीतने के मौके भी हैं। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: एक्स।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
2: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Pass.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है। 3 घंटे बीत गए पता भी नहीं चला, मगर जाने से पहले आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और मुझे जरा दुआओं में याद रखना। और फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

तो जी वाइबर वीकेंड दोनों की शुरुआत हम कर चुके हैं. वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग. 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहां पर बेसिक बोरिंग इवनिंग को ऐसे जबरदस्त बनाने की ट्रिक है मेरे पास. तो मैं जो है आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जो है जबरदस्त बना के रहूंगी. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका बीड़ा जो है मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. एंड देखिये यार, मुझे ऐसा लगता है कि आज ज्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि वीकेंड है एंड आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील कर रहे होगे, हल्का फील कर रहे होगे. आपको लग रहा होगा कि वाओ यार, आज तो मैं जो है सेवेंथ क्लाउड पर हूँ. एंड उस सेवेंथ क्लाउड पर भी देखो वाइब की कमी ना हो, इसका मैं पूरा जो है ध्यान रखूंगी. सो फिलहाल लाल लाल कलर ची बांगड़ी वाला गाना जो है, बांगड़ी मतलब जो है मराठी में बैंगल्स को कहते हैं. सो द बैंगल सॉन्ग आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इसे इंजॉय करो. एंड यार, सोनू राठौड़ के कौन से गाना ऐसा नहीं है जिसपे मैं वाइब नहीं कर सकती यार, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया. सो आप वॉल्यूम बढ़ाकर मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक इंजॉय करो. मैं आपके लिए आज बहुत सारी चटपटी गॉसिप, बहुत सारी अमेजिंग गेम्स, सब कुछ लेकर आई हूँ. आपके वीकेंड को देखो बिल्कुल वर्थ सेलिब्रेटिंग बनाऊंगी. सो वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास.

0: होगी यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
0: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान ग्रोसरीज बेकरी हॉट फूड फुटवेयर बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
5: ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਨਰਜੀ ਕਾ ਬੂਸਟਰ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਵਨਿੰਗ ਸਿਰਫ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: यार अगर कॉम्प्लीमेंट करना है, अगर मनाना है रूठे हुए को, तो ऐसे गाकर मनाओ ना यार। इससे बढ़िया और टेक्निक क्या बताएं हम आपको। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखा है। हाँ जी, आप जो है सिमरन को के साथ इंजॉय करते थे इस वक्त जो है जबरदस्त इवनिंग, लेकिन अभी वो वादियों में इंजॉय कर रही है, सो बेटर है कि आप मुझसे ही संतोष कर ले। संतोष इज बेसिकली किसी का नाम नहीं है, संतोष इज लाइक ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो। वैसे बात जो है अब हम कर लेते हैं टेम्परेचर की, इस वक्त के मौसम की। गर्मी है लेकिन हवाएं कल तक चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार चलो अब फाइनली राहत मिल जाएगी, एंड राहत मिली भी है। 36 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर गेस व्हाट 40s में नहीं है, 39 डिग्री सेल्सियस आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है, एंड लोएस्ट टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आपसे थोड़ी सी देर में यानी 5:51 के अराउंड जो है वो सनसेट हो जाएगा। सो बस आपकी सेम ड्रिल है, आप अगर कहीं रुके हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, या आपकी गाड़ी रुकी हुई है सिग्नल पे, सो एक सनसेट की बढ़िया सी फोटो खींच के मुझे भेजो, सनसेट की नहीं तो एटलीस्ट वो जो अभी गुलाबी सा सुर्ख सा आसमान हो रहा होगा ना, उसकी फोटो मुझे भेज दो। क्या है ना कि मुझे ऐसी वॉलपेपर वर्दी फोटोज काफी पसंद है, एंड ये जो मेरा स्टूडियो है इसमें खिड़कियां बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं बाहर का मौसम नहीं देख सकती, बाहर का माहौल नहीं देख सकती, तो मौसम का क्या मामला हो रहा है ये आपको मुझे फोटो खींच के बताना पड़ेगा। सो फोटो खींचिए 3311063 पे, आपके कैमरा के लेंस के थ्रू जो है मुझे बाहर की दुनिया दिखा दीजिए। अब आप ही तो है मेरा एक लौता सहारा, आप लोगों के बिना मैं क्या करूंगी। तो फिलहाल अमेजिंग वाले गाने यानी जबरदस्त हिट वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इन्हें एंजॉय कीजिए, एंड प्लीज फोटो भेज दीजिए ना 3311063 पर। मैं हूँ आपकी कशिश।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
0: फिलहाल अलका याग्निक जी की आवाज में फुल ऑन टपोरी स्टाइल में आइला रे आइला एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: back from vacation in your hometown, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से.
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें.
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

देखिए मैंने ऐसा वैसा कैसा भी जादू आप पे नहीं किया है, और अगर आपको लग रहा है कि मैंने जादू किया है तो वो जादू नहीं है, वो मेरा चार्म है जिसकी वजह से आप इतने अट्रैक्टेड हो गए हो मेरी तरफ। मेरी क्या है, नाम का ही मतलब जो है अट्रैक्शन है। कशिश का मतलब उर्दू में जो है अट्रैक्शन होता है। थोड़ा ज्यादा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है कई बार, अच्छा नहीं है पता है लेकिन फिर भी होते जा रहा है। वेलकम जी, गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑल एफएम। मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पर यू नो आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए, आपसे ये इल्तिजा की थी मैंने कि यार मुझे जो है जल्दी से प्यारी प्यारी जो है फोटोज भेज दीजिए बाहर के मौसम की, आसमान की, और अगर सनसेट होता हुआ दिख रहा है तो उसकी क्या है ना मुझे अच्छा लग जाएगा, वरना इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में तो अच्छा नहीं लग रहा है। सो महबूब जी ने जो है एक बहुत ही प्यारी वीडियो भेजी है, ओ माय गॉड वेरी नाइस। एंड डोमिनिक जी ने भी जो है बहुत ही खूबसूरत फोटो आसमान की भेजी, अबरार जी ने भी जो है बहुत ही प्यारी फोटो जो है वो हमें भेजी है। एंड अबरार जी, इससे पहले जो आपने फोटो भेजी है वो भी बहुत खूबसूरत है। ओके असमा जी ने भी एक वीडियो भेजा है, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड। एंड यस मोहम्मद हाफिज जी ने भी एक बहुत ही प्यारी फोटो भेजी है, उन्होंने लिखा है नाइस व्यू। देखिए नाइस व्यू तो है लेकिन बीच में अगर गाड़ियां नहीं होती तो और अच्छा होता। वैसे आप लोग भी आई होप जो है अब आप लोगों की जो है ऑफिस से छुट्टी हो गई होगी है ना, वापस अपने घर की ओर निकल रहे होंगे आप, और वीकेंड की फुल ऑन प्लानिंग होगी। वीकेंड पे क्या कुछ करने का प्लान है जरा बताइए मुझे, मैं भी अपने प्लान उसके हिसाब से बनाऊंगी। 3311063 इज नंबर, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि आपके वीकेंड के क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। वैसे तो मैं आपको शो के एंड तक बताऊंगी कि कहां कहां क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या प्लान कर रखा है तो और अच्छा होगा। सो जल्दी से फोन उठाइए 3311063 और मुझे मैसेज कर दीजिए, जिन लोगों ने भी मुझे फोटोज भेजी उसके लिए थैंक यू सो मच। रब राखा, फिलहाल रब राखा गाना एंजॉय करके आइए, मैं हूं आपकी कशिश जीवन दास।

0: शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
0: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadhar Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadhar Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadhar Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ऑफ कोर्स यार, आप लोगों की ही तो रहने वाली हूँ, इसीलिए तो खुद को आपकी कशिश भी कहती हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफ एयर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग। एंड जबरदस्त इवनिंग पे आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीड़ा जो है वो मैंने अपनी कंधों पर उठा रखा है। एंड देखिए वीकेंड है आज, तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग ऑटोमेटिकली खुश होंगे। अब मैंने पूछा ये था कि यार वीकेंड पे कहाँ जाने का प्लान है। अब देखो यार, टॉय फेस्टिवल जो है वो कब से चल रहा है लेकिन मैं अभी तक नहीं गई हूँ। सो मैं जो है कहता टॉय फेस्टिवल जाने का सोच रही हूँ इस वीकेंड पर। एंड जब मतलब कुछ इतने सारे इवेंट जो कतर में होते रहते हैं ना वो हुए एंड में नहीं जा पाई, तो बाद में बहुत डिसअपॉइंट हुई थी मैं खुद के साथ कि मैं क्यों नहीं गई। जैसे हॉट व्हील्स वाला जो इवेंट चल रहा था उसमें मैं नहीं जा पाई थी, तो उसमें मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं क्यों नहीं गई। एंड अब मुझे जो है बस एक महीना और है ये टॉय फेस्टिवल, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसे छोड़ूं, इसलिए मैं तो देखो टॉय फेस्टिवल जाने वाली हूँ। बाकी आप लोगों के क्या प्लान्स हैं ये आप मुझे बताइए 3311063 पर। हो सकता है कि आपके प्लान्स जो हैं वो किसी और के भी प्लान्स बन सके, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, थोड़ी सी देर में मैं सबका जो वीकेंड है वो प्लान कर दूंगी, बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, आपको क्या क्या क्या खास हो रहा है। फिलहाल क्या क्या बोलते हो, मुझे ऐसा लगता है क्या कमाल है गाना जो है वो भी इंजॉय कर लेना चाहिए हमें दिलजीत दोसांझ की आवाज में। सो वॉल्यूम बढ़ाकर मैं वापस आऊंगा मूवी का ये ट्रैक, इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: बनाया।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: Radio Olive 106.3 FM Geo Pindas.
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
2: Radio Olive, our number one.
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
5: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: रेडी
2: टू लर्न,
1: टू प्ले, टू ग्रो।
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

साथिया मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो वाले पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, वादे के अनुसार थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं, लेकिन वक्त हो गया है आपको एक अमेजिंग वाला गेम खिलाने का, यानी चुटकी भर सॉन्ग, जहाँ पर आपको थोड़ा सा गाना, छोटू सा गाना मैं सुनाऊंगी एंड आपको जो है मुझे बताना है, पता लगाकर कि ये कौन से गाने का पार्ट है, गाने का नाम क्या है, मूवी का नाम क्या है, बस आपको इतना सा बताना है। तो अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं और गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो ये जो गाना है ये आप ही के लिए है, तो ज़रा कान लगाकर और ध्यान लगाकर ये गाना इन्जॉय कीजिए।

जल्दी बताइए 3311063 पर मैसेज करके कि ये जो गाना है ये कौन सी मूवी का है, इस गाने का नाम कौन सा है। क्योंकि देखो हर रोज मैं एक ऐसा गाना सुनाती हूँ जिसके गाने में ही उसका नाम होता है, लेकिन अभी मैंने ऐसा वाला पार्ट जो है आपको सुनाया, इसमें गाने का कोई भी यू नो नाम नहीं है। सो मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके कि ये कौन सा गाना है। थोड़ा सा टफ होगा आज आपके लिए, लेकिन असली बॉलीवुड फैंस और स्पेशली अमिताभ बच्चन जी के फैंस के लिए ये बहुत आसान होने वाला है। 3311063 इज द नंबर। फिलहाल सारी के फॉल्स का गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, आर राजकुमार मूवी से। वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और आंसर कीजिए।

0: are listening to Radio Colive 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
2: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai zabardast evening. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

पता नहीं क्यों यार, इस गाने के बाद ना घर की बहुत याद आ रही है, भोपाल की बहुत ज्यादा याद आ रही है। और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं जो भोपाल को जानते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक सीरीज आई थी मुसाफिर कैफे, उसमें भोपाल बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। भोपाल इंडिया में है, मध्य प्रदेश जो सेंट्रल इंडिया है उसमें जो है भोपाल है, एंड सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत सी जगह है यार। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई। और देखो यार, मेरी याद बात का किस्सा तो चलता रहेगा, आपको मैं बताती रहूंगी कि यार भोपाल आखिर है कैसा। अगर आपको जानना हो उसके बारे में डिटेल में तो हम अच्छे से दिल खोल के बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त जो है चुटकी भर सॉन्ग में, आज का जो सॉन्ग था वो किस किसने सही गैस किया है ये जानने का हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं गाना आपको सुना देती हूँ कि कौन सा गाना है जो मैंने आपसे पूछा था आज।

यूँ तो देखो इस गाने की ना सिर्फ एक ट्यून ही काफी है ये बताने के लिए कि ये गाना आखिर कौन सा है। असली बॉलीवुड फैंस को ना सेकंड भी नहीं लगता ये गाना पहचानने में, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनका साबुन थोड़ा सा स्लो है, सो उनको जो है काफी वक्त लगा। एंड सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संजीव जी जो है उनको थैंक यू कहना चाहूंगी कि संजीव जी ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे ऑडियो मैसेज भेजा है और उसमें लिखा है कि कशिश जी आप इस गाने को टफ बोल रही हैं, ये तो सबसे आसान है और थोड़ा सा गा के भी सुनाया है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव। एंड उसके बाद अदनान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, हम मूवी का ये ट्रैक है जुम्मा चुम्मा दोगी। एंड निशा ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। निशा ने खैर जो है मुझे सिर्फ ये बताया है कि मूवी का नाम क्या है, गाने का नाम नहीं बताया, बट आप सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कंग्रेचुलेशंस। एंड फिलहाल जो है इसी बात में मुझे ऐसा लगता है ऑल फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आवर सुनने का वक्त हो गया, सो वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए एंड वापस लौट के आइए आपकी कशिश के पास। कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office,

0: लड़के को।
1: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
0: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
1: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
0: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
1: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
0: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
0: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine, 5x more clean.

नहीं मतलब नीरज श्रीधर से बेटर कोई जानता ही नहीं है लड़कियों को. लड़कियों को और क्या चाहिए कि आप उनको खुल के जो है प्यार बताइए. आप उनके फेवरेट गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाइए, उनकी आवाज को कॉलर ट्यून बना लीजिए. हाँ थोड़ा सा क्रिंजी है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बढ़िया है. वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश. शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखा है. अब देखिए यार, वीकेंड जो है उसकी शुरुआत आप लोगों ने तो कर ही दी होगी. हम थोड़े से यहाँ पर हैं अभी स्टूडियो में लेकिन आप तो आजाद चिड़िया हैं, अब आजाद परिंदा हैं. अब आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, आराम करेंगे, फन करेंगे, बढ़िया है, बिंज वॉच करेंगे. लेकिन अगर बिंज वॉच क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी देर में अपनी मतलब सिलेक्टेड हैंड पिक्ड यू नो मूवीज की और सीरीज की जो है लिस्ट मैं आपको देने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है. सो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपका ऑफिस है, आप HR हैं, आप मैनेजर हैं और आप अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं, उन्हें हैप्पी करना चाहते हैं, तो हैप्पीनेस लाउंज लेकर रेडियो ऑलिव की टीम और रेडियो ऑलिव के RJ जो है वो आ सकते हैं आपके ऑफिस में और बहुत सारे फन फॉलिक मस्ती मजा करा सकते हैं. बस आपको क्या करना है, मैसेज करना है और हमें इनवाइट करना है 3311063 पर. तो आपकी टीम को फुल एनर्जाइज करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम एकदम तत्पर हैं. सो 3311063 इज द नंबर. जल्दी से फोन उठाइए एंड मैसेज कर दीजिए कि यार कशिश हमें हैप्पीनेस लाउंज जो है वो अपने ऑफिस में कराना है, बाकी हमारी जो टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी. फिलहाल देखिए यार, मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल की मैं कितनी भी बात करूँ ना उतना कम ही लगता है. तो कुछ लोगों का अभी थोड़ी देर पहले ना मैं याद कर रही थी भोपाल को एक गाना सुनने के बाद, एंड कुछ लोगों ने लिखा कि यार कशिश भोपाल के बारे में बताओ, आखिर भोपाल कैसा है. यार भोपाल ना एकदम घर जैसा है. मतलब आप अगर आँख बंद करके अपना घर इमेजिन करते हो ना, तो आप मतलब आपको नहीं पता कि भोपाल कैसा दिखता है, लेकिन आप घर जब भी इमेजिन करते हो तो भोपाल को इमेजिन करते हो. मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप आंख बंद करके अगर इमेजिन करेंगे एक लेक, लेक के पास एक ग्रीनरी वाली जगह, एंड उसके बाद एक रोड, ऊपर से ठंडी हवा, एंड उसके बाद आपका थोड़े से एकदम एलिवेशन पे आपके हवा मतलब हिल पे आपका घर, वो भोपाल है. एंड मैं भोपाल से हूँ. एंड हाँ, कतर जो है वो थोड़ा सा रिजेंबल जो है वो करता है, बिकॉज यहाँ पानी है, रोड्स वैसी ही है, सीनरी वैसी ही है, एंड शांति भी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं. सो कतर एंड भोपाल इज ओके, इट्स सिमिलर, बट ऑब्वियसली डेवलपमेंट के मामले में एंड बहुत सारी अलग चीज़ों में कतर इज ऑन अनदर लेवल. बट भोपाल मतलब आपका घर तो हमेशा घर ही होता है ना. सो इसीलिए मैं भोपाल को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कभी कभी, एंड आज स्पेशली वो दिन है बिकॉज बहुत सारे लोग ना स्टोरीज लगा रहे हैं वहाँ पे बारिश हो रही है, एंड यहाँ पर हम जो है यहाँ पे टेम्परेचर देख रहे हैं 39 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस. तो थोड़ा सा ऐसी जलन सी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, बस हम भी जो है अच्छे मौसम के साथ लोगों को जलाने के लिए, जलस फील कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. क्योंकि कतर की सर्दियाँ तो बहुत ही अमेजिंग होती है यार. मैं जब सर्दियाँ यहाँ पे चल रही थी उसी वक्त कतर में आई थी, एंड मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ उस टाइम को. मुझे इतनी याद आ रही है ना, और मैं एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब वैसा मौसम आएगा, एंड धीरे धीरे करके हम उस मौसम के पास जाते जा रहे हैं. सो फिलहाल अगर आप लोग भोपाल कैसे दिखता है इसमें इंटरेस्टेड हैं, सो मुसाफिर कैफे नाम का एक सीरीज़ है, वो आप इस वीकेंड पर देख सकते हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो अरे मतलब वायरल है वो सीरीज मुसाफिर कैफे. देखिए उसके शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में आपको भोपाल देखने को मिलेगा, एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है. इनफैक्ट गाने भी बहुत खूबसूरत है. सो एक मुसाफिर कैफे का ही गाना काफी है जो है आपके रेडियो सेट्स पर. वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: Trek. Brought to you by Dalat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 7:14 दैट इज 7:14 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा
3: Hi guys, this is Jorita Gandhi.
4: Radio Olive, I'm the number one.
3: You are listening to me on Radio Olive. Gio Bindas.
4: Radio Olive, I'm the number one.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
9: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: देखिए वीकेंड पे तो यही होता है, रास्ते से जाते हैं, भेलपूरी खाते हैं और वीकेंड को इंजॉय करते ही जाते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, वीकेंड है एंड कुछ लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं एंड कुछ लोग हैं जो घर पे बैठ के अपने सोफे पे जो है बैठ कर इंजॉय करना चाहते हैं कुछ मूवीज को, एंड समझ नहीं आ रहा है कि क्या देखा जाए। तो मैं जो है रिकमेंड करने के लिए आ गई हूँ कुछ हैंड पिक्ड मूवीज़। ओके सो देखो, कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिन्हें बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है एंड वक्त के साथ कुछ मूवीज़ को मिला है, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो अभी भी अंडररेटेड रह गई हैं, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मूवीज़ हैं। सो खूबसूरत से याद आया, सबसे पहली मूवी जो है उसका नाम ही खूबसूरत है। सो सोनम कपूर एंड फवाद खान, ओ माई गॉड व्हाट केमिस्ट्री एंड अमेजिंग मूवी। आप मूवी देखोगे और आपको समझ आएगा कि मूवी का नाम खूबसूरत बिल्कुल सही रखा गया है। उसके बाद ब्रेक के बाद दीपिका पादुकोण बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हैं एंड उसके बाद इंग्लिश विंग्लिश भी एक ऐसी मूवी है जिसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए, एंड अगर एक बार देख चुके हो तो फिर से देखो यार, कम्फर्ट मूवी है। एंड अगर आपको थोड़ी सी यू नो मीनिंग वाली मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक है, थोड़ा सा इंटेंस देखना है कुछ एंड कुछ सेंसिबल सा देखने का मन है, सो लंच बॉक्स एक ऐसी मूवी है जिसे आपको एक बार ज़रूर से देखना चाहिए। सो ये कुछ पिक्स हैं जो मैंने पर्सनली ऐसे हैंडपिक किए हुए हैं कि ये मूवीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं सबसे ज़रूर बांटूंगी। सो 3311063 पर मैसेज कर दीजिए अगर मेरी मूवीज़ की जो लिस्ट है ये आपको चाहिए, एंड अगर आपके पास आपकी मूवीज़ की कोई लिस्ट है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल ज़बरदस्त हिट सुनने का मौका आ गया है, सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

युवा मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए शो लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग. मैं अब देखिए यार, होता है ना क्या, अक्सर आप जो है वीकेंड पे इंजॉय करने का सोचते हो, लेकिन आधा वीकेंड तो ऐसे चला जाता है मूवीज डिसाइड करने में, एंड उसके बाद आपके साथ जो लोग मूवी देखने वाले हैं उनको भी तो मनाना पड़ता है ना कि नहीं नहीं जो मैं मूवी बता रही हूँ वो सच में अच्छी है. एंड आपने मना लिया और उन्होंने बैठ के पूरी मूवी आपके साथ देख ली एंड उसके बाद उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो जस्टिफाई करना पड़ता है कि नहीं नहीं तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं है इसलिए तुम्हें मूवी अच्छी नहीं लगी. अब देखिए यार, आपकी बेसिक और बोरिंग इवनिंग्स को जो है जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने जो है अपने इन कंधों पर उठा रखा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभानी तो पड़ेगी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उठाने में आप लोग जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी लिस्ट बताई कि कौन कौन सी ऐसी मूवीज हैं जो आप इस वीकेंड पर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपनी जो लिस्ट है वो शेयर की. आसमा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत लिस्ट जो है वो हमसे शेयर की है एंड इसमें से बहुत सारी मूवीज हैं जो मैं आपको आने वाले टाइम पर बताने वाली थी लेकिन साथ में ही बता देती हूँ. सो आसमा जी की लिस्ट में सबसे पहली मूवी है तलाश. तलाश एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है, आमिर खान की है एंड बहुत ही अच्छी है. कहानी विद्या बालन अगेन अमेजिंग. फैशन आपको एक बार जरूर से देखनी चाहिए अगर आप जो है मीडिया या फैशन या किसी भी ऐसे फील्ड में जो है काम करना चाहते हो तो. प्यार का पंचनामा अगेन एंड मेरे डैड की मारुति. ओ माय गॉड, मेरे बचपन की फेवरेट मूवी है ये. इसके बाद ये जो है एक मूवी और है पिंक. यस, तापसी पन्नू अमेजिंग, अमिताभ बच्चन तापसी पन्नू बेस्ट कॉम्बिनेशन. सो ये वो लिस्ट है जो हमसे शेयर की है आसमा जी ने. थैंक यू सो मच आसमा जी एंड हमारा टेस्ट बहुत मैच करता है. एंड आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई लिस्ट है आप शेयर कर सकते हैं. बाकी अगर और सजेशन चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं. फिलहाल जो हम यू नो वीकेंड पे मचाने वाले हैं धूम, तो धूम मचाने वाला गाना जो है वो वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करते हैं एंड कहते हैं जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

सच बताना, ठीक है? दिल पे हाथ रख के मुझे बताना कि क्या इस गाने से मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है वाली वाइब नहीं आती? आती है ना? मतलब ये गाना जो है मुझे पता नहीं कौन से नॉस्टैल्जिया में लेके चले जाता है। मैं उस टाइम पैदा भी नहीं हुई थी जिस टाइम पर ये गाना रिलीज हुआ था, मतलब मेरी मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी, ये उससे भी पहले का गाना है। हीरो नंबर वन, मतलब नंबर वन कॉमेडी मूवी अगर मैं बात करूँ तो, ब्रेन रॉट देखने का मन हो तो। वैसे वापस आते हैं टॉपिक पे। गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाया है। अब देखिए, एंटरटेन करने का बीड़ा उठाया है तो एंटरटेन करूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें जो है नहीं बताऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मी बीइंग अ जेन जी, अगर मैं जेन जी की बात ना करूं तो भी नहीं, ऐसा भी नहीं होने से, मतलब होने ही नहीं दूंगी मैं। सो वैसे तो मैं जेन जी हूं, लेकिन जेन जी का मजाक उड़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। एंड मुझे ही नहीं यार, मुझे लगता है कि जेन जी का मजाक उड़ाने में सभी को बहुत मजा आता है। एक तो या तो लोग जो है मौसम का की बात करते हैं या तो जेन जी की बात करते हैं। हमारे ऑफिस में भी यही होता है, या तो लोग ये बोलते हैं कि यार मौसम जो है वो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, या तो ये बात करते हैं कि जेन जी ऐसे हैं जेन जी वैसे हैं। सो बस जेन जी की एक नई रिसर्च जो है वो आई है जिस पर हम बात करने वाले हैं। सो जेन जी जो है, अपेरेंटली जेन जी जो है वो लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने पे या लिंक्डइन पे जो है ये जॉब ढूंढ रहे हैं हम या कुछ भी पोस्ट करने में ना थोड़ा सा डरते हैं, पता नहीं क्यों। जेन जीज को जो है एंजाइटी होने लग जाती है जैसे ही लिंक्डइन पर पोस्ट करने की बात आती है। इनका कॉन्फिडेंस इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे एकदम हाई है, लेकिन लिंक्डइन क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे भी वीकेंड पे इंजॉय करना है गाइज, तो ठीक है छोड़ो। सो अपेरेंटली जेन जी को जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है लिंक्डइन पे पोस्ट करने पे। एंड मैं जो है खुद जेन जी हूँ एंड मैं इस बात की गवाह हूँ कि हाँ मुझे भी लगता है। मैं हर सोशल मीडिया हैंडल पर बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं लिंक्डइन पे पोस्ट ही नहीं कर पाती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है। पता नहीं, मैं मिलेनियल्स को देख कर ये सोचती हूँ कि यार काश मैं भी इनके जैसे पोस्ट कर पाऊँ जो किसी और सोशल मीडिया हैंडल पर मैं देख के नहीं सोचती। मुझे हमेशा जो है मिलेनियल्स के इंस्टाग्राम हैंडल को देख के लगता है ओ माई गॉड This is so not aesthetic. ये ऐसे क्यों पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन पे अपोजिट लगता है कि वाओ यार काश इनके जैसे मैं भी पोस्ट कर पाती। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लिंक्डइन पे पोस्ट करने पे आपको भी थोड़ा अजीब सी फीलिंग आती है, या आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट कर सकते हो? वैसे अगर आपने अभी तक हमारा यानी रेडियो ऑलिव का लिंक्डइन जो प्रोफाइल है उसे अभी तक फॉलो नहीं किया है जाकर, तो जाके जल्दी से फॉलो कर लो। वहां पर भी बहुत क्वालिटी कंटेंट जो है वो हम पोस्ट करते हैं। सो 3311063 पर आके मुझे बता दो कि क्या आप लिंक्डइन पे ऑफन पोस्ट करते हो या नहीं करते हो। वैसे आज वीकेंड पर लिंक्डइन की बात तो वैसे अभी हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जेन जी की बात है तो कैसे ना करें। फिलहाल वैसे जेन जी का बहुत ज्यादा प्यारा गाना जो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सारी, वो आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर। सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa।

अभी अरिजीत सिंह ने ये कहा है कि वो मरीज इश्क हैं, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार मैं कहूंगी कि मैं मरीज लेजीनेस हूँ तो आप बिल्कुल खुश नहीं होगे। आप कहोगे यार कशिश ये तो आलस वाली बात कर दी आपने। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीआर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैंने अपने इन नाजुक कंधों पे उठा रखा है। अब देखिए यार, वक्त हो गया है, वक्त सच में हो गया है नेम गेम खेलने का, जहां पर आपको बस अपना प्यारा सा क्यूट सा नाम जो है वो मेरे चैट पर आकर लिखना है, जब तक मैं बात कर रही हूँ सिर्फ तब तक। सो आपके पास बहुत कम वक्त है, 3311063 इज द नंबर, जल्दी से अपना नाम जो है वो टाइप कर दीजिए। देखते हैं किसकी उंगलियां ऐसे एकदम फास्ट फास्ट चलती है कीबोर्ड पर एंड वो अपना नाम जल्दी से लिखते हैं। तो आपके पास थोड़ा ही वक्त है, जल्दी जल्दी से अपना नाम मुझे भेजना शुरू कर दीजिए 3311063 पर, एंड मैसेजेस आने शुरू हो गए, मुझे आवाज जो है वो आनी लग गई है। सो 3311063 इज द नंबर, जल्दी जल्दी अपना नाम जो है वो मुझे मैसेज कर दीजिए। ओहो बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं। सो सबसे पहले जो है फैजल जी ने अपना नाम भेजा है, फैजल जी हेलो। उसके बाद महबूब जी ने भी अपना नाम भेजा है, एंड उसके बाद हमें नारायण जी का भी मैसेज आ चुका है, एंड पोली जी ने अपना नाम जो है पोली जी भेजा है, एंड राजू जी ने अपना नाम भेज दिया है, इश्तियाक अंसारी जी ने अपना नाम भेज दिया है, एंड रफ़ी फ्रॉम हैदराबाद हाय जी कैसे हैं आप। बाबू अहमद जी ने भी अपना नाम भेजा है, और तौफील अहमद जी ने अपना नाम भेजा है, और उसके बाद जफ़र जी ने अपना नाम भेजा है हेलो जी, उसके बाद उसामा जी ने अपना नाम भेजा है, जोहेब जी ने अपना नाम भेजा है, सभ्यसाची हाय कैसे हैं आप, एंड उसके बाद प्रज्वल ने भी अपना नाम भेजा है, एंड प्रज्वल ने सिर्फ अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने हाय दिस इज प्रज्वल पूरा लिखा है, एंड उसके बाद अरीज जी ने इब्रार जी ने अरीज जी का नाम भेजा है, एंड और फिर हमें नाम आ गया है अस्मा जी का। अस्मा जी आज आप थोड़े से लेट हो गए हो। तो ये थे लोग जिन्होंने नेम गेम में पार्टिसिपेट किया एंड उन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दिखाते हुए अपना नाम जल्दी जल्दी टाइप करके हमें भेज दिया है। कल तो एक्चुअली हम टेक शो में मिलने वाले हैं, तो कल द टेक शो में हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, कल ये वाला गेम नहीं खेलेंगे लेकिन उसके बाद ये गेम जो है वो जारी रखेंगे। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
1: So, ji, aapko waqt batane ka waqt ho chala hai. Is waqt studio clock mein ho rahe hain 8:11. That is 8:11. Stay tuned, Jio Bindas.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
3: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन.
4: हाय दिस इज विपाशा बासु.
5: हाय आई एम लक्ष्मण राव.
6: हाय मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
7: हाय दिस इज दिशा पार्डी.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 एफएम.
8: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग

0: ये सिर्फ मुझे ही लगता है या सच में हर एक घर में कोई ना कोई मन्नू जरूर होता है? मेरे घर की मन्नू तो मैं ही हूँ। मतलब मुझे जो है घर में अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन मन्नू जो है सबसे कॉमन है। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, वैसे तो टेक्नोलॉजी की बातें मस्ती के मजे के तड़के के साथ कल हम करने वाले हैं द टेक शो में शाम को 4 बजे से, लेकिन आज जो है मैं टेक्नोलॉजी वाली एक बात को जो है एड्रेस करना चाहती हूँ कि यार कतर कितना बढ़िया काम कर रहा है। सो कतर ने जो है लॉन्च किया है पाम रिकॉग्निशन सिस्टम, जो बच्चों की अटेंडेंस को ट्रैक करेगा स्कूल में और बसेस में, स्पेशली गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें। तो यार कितनी बढ़िया बात है ना, मतलब एक जो टाइम था जहां पर टीचर बच्चों के नाम लेती थी एंड बच्चे एक दूसरे के लिए प्रेजेंट मैम एब्सेंट मैम ऐसे बोल देते थे, एंड अब पाम रिकॉग्निशन तक हम पहुंच गए। यार टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, एंड मुझे भी यार जैसे मैं स्कूल में ऑफिस में पंच इन पंच आउट करती हूँ, वैसे स्कूल में पंच इन पंच आउट करने में कितना मजा आता ना। थोड़ा सा यू नो स्ट्रेसफुल हो जाता लेकिन मजा बहुत आता। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो। मैं हूं आपकी कशिश, थोड़ी सी देर में बातचीत इस पे करेंगे कि यार वीकेंड पे और कहां कहां जाया जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ऐसे तो मेरा नाम माही नहीं है, लेकिन इतने प्यार से बुलाओगे तो आ ही जाऊंगी। आपकी का शो शो में एड आपके लिए शो जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई 106.3 रेडियो ऑल एफ एम। आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को यू नो फन बनाने का, जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखी है। एंड बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे, यार कशिश तुमने वीकेंड पर जिन लोगों को घर पे रहना है एंड कंटेंट देखना है, मूवीज देखना है, उनको तो बहुत सारे सजेशन दे दिए, लेकिन हम जैसे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी तो कुछ बताओ। अब देखो मैंने तो आप लोगों से पहले ही पूछा था कि आपका क्या प्लान है वो मुझे बताओ, तो उससे मैं जो है अपना प्लान अलाइन कर लूंगी। बाकी अगर आप जो है स्पोर्ट्स फैन है सो बहुत सारे स्टार लीग मैचेस जो है वो होने वाले हैं, सो लाइव फुटबॉल मैचेस आप देख सकते हैं, कल्चरल इवेंट्स भी बहुत सारे होने वाले हैं, कैमल रेस जो है वो होने वाली है अर्ली मॉर्निंग में एंड सो वो आप देख सकते हैं, सूक वाकिफ पर बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें होने वाली हैं, सो वहां पर भी आप जा सकते हैं। एंड मेजर इवेंट्स जो हैं वो कुछ हैं जो नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाले हैं, उनके बारे में भी अभी से मैं बता देती हूँ। हलाल एक्सपो जो है वो शुरू होने वाला है एंड कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फेलकॉन एग्जीबिशन जो है वो होने वाला है, सो बहुत सारी चीजें जो है वो कतर में होती रहती है। एंड अगर आप सोशल मीडिया पर एक बार डालोगे ना कि यार कतर दिस वीकेंड, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेडियो ऑलिव की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। सो एक बार जाकर जरूर चेक करो क्या क्या खास है, वो सब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फेवरेट मूवी, वन ऑफ द फेवरेट मूवी, अब ये मत बोलने लग जाना कश यार हर दूसरी चीज तुम्हारी फेवरेट होती है, अब मैं क्या करूं, मुझे सब कुछ पसंद आ जाता है। तो रावण मूवी का ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
2: Ready?
3: Ready!
2: To learn!
3: Yes!
2: To play!
3: Absolutely!
2: To grow!
3: With Maserati!
4: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसूराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
3: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
4: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसूराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
5: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: देखिए माही और रांझा दोनों चुप है, दोनों को बोलने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि उनके हिस्से का ये लड़की जो है वो बोल चुकी है। एंड अब ये जो आपका रांझा है या ये यानी ये जो आपकी कशिश है, इसके जाने का यहाँ से वक्त आ गया है। आपको टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। मैं हूँ आपकी कशिश, आप मेरे साथ जबरदस्त इवनिंग शो इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको टाटा बाय बाय बोल रही हूँ। आप अपना वीकेंड इंजॉय कीजिए, मैं भी बस अब जाके इंजॉय करती हूँ। कल मुलाकात होगी शाम को 4 बजे द टेक शो में, जहाँ टेक्नोलॉजी की बात होगी मस्ती के मजे के तड़के के साथ। बाकी अगर तब तक मेरी याद सताए तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर मैं भी आपको मिल जाऊंगी, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। जाते जाते वही कहना चाहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, एंड यू नो अपना और अपनों का ख्याल रखना, मुझे मिस करते रहना। बाकी कल अगर धूप में बाहर निकलो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, जियो पिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, Ghana.

From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: मार्केट बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा
1: Club Olive, Club on Radio 6.3 FM.

0: 613 FM. You're listening to Club Olive.
1: Club Olive. 106.3 FM.

game. Club Olive. Club Olive Radio. 106.3 FM.

0: 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट।

0: Club Olive. Club on Radio
1: 106.3 FM.
0: Radio Olive Pay. Club Olive. Club.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम यू आर लिसनिंग टू क्लब ऑलिव.

0: hear this.
1: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
2: ओए संदीप सिंह जी, हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाद के प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं। आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है